0: मात्र डीटीएच सेवा डिश होम
1: डिश होम खुशी को कनेक्शन
2: सुरक्षित भविष्य को लागी जीवन बीमा गरौं जीवन बीमा का लागी राष्ट्रीय जीवन बीमा कंपनी ने रोजौं न्यून बीमा शुल्क में अधिक बोनस दर रहेको नेपाल सरकार को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त एकमात्र जीवन बीमा कंपनी बीमा को क्षेत्र में विश्वसनीय नाम राष्ट्रीय जीवन बीमा कंपनी साबिक को राष्ट्रीय बीमा संस्थान प्रधान कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौं।